गावण तुदनो जति सती संतोखी गावण तुदनो वीर करारे गावण तुदनो पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गावण तुदनो मोहनिया मन मोहन स्वर्ग माछ पयाले गावण तुदनो रतनो पाए तेरे अठ साठ तीरथ नाले।

प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवरना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया, चुन चुन शत्रु हमारे मारिया। आप हाद मुझे उबरे, मरण काल का त्रास निभरे। उजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तुज्यु करियो रक्षा। राख लियो मैं राखण हारे, साहेब संसहाय प्यारे।

स्वयं भव वृक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो दुष्ट जिते उठव तुत पाता सकल मलेश करो ऋण गाता जे अस्तुता शरणी परे तिनगे दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जमन भग परे ते हारे तिनगे तुम संकट सबटारे जो काल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट न आए है अरछा हुए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दुष्टन जाए ने हर हो ताके ताप तनक में हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा शब सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन्नर नाम ते हारो कहा दार दुष्ट दोख ते रहा खड़केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले उबारी सर्व ठाउर मोह सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किलबिक सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्तुजा पहे दयाल्ला पूर्ण करा ग्रंथ तकल्ला मन भांजत फल पावै सोई दुखना तसे व्याप कोई अड़िल सुने गुम यो याहे सुरसना पावई सुने मूर्छित लाए चतुरता आवई दुख दर्द भव निगड़ना दिन नर गेरा है हो जो या की एक बार चौपाई को कह है चौपाई संबत सत्रह सहस पणिज अर्ध सहस पंथीन कह जाय पाद्रव सुधी अष्टमी रबवारा तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्रो पखया ने त्रया चरित्रे मंत्री भूप

ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन मजियां वाधाइया राग रतन प्रवार परियां शब्द गावन आइया शब्दोता गावो हरी केरा मन जिन्हीं वसाया कहे नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा

काल विजतिन वस्तु पयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब आधारो जे को खावे जे को पुंछै तिसका हुए उधारो ए वस्त जी रह जाई नेत नेत राखुर धारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा तेरा किता जातो नाही मैं ना हूँ जो कि तोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेहरामत होई सतगुरु सज्जन मिलया नानक नाम मिलैता जीवा तन मन थी वह हरिया पौड़ी तिथे तू समरथ

एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलांत जमत।

गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरकै गुर नानक लई त्याए बिरंगत गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद नाम सिमरऊ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करुणानिद आवै ताए सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियाँ दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। इन माणिया दे मान साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ओ महाराज पार बख्शा की अमृत वर तों लैके सुंदर सिंघासन ते सज के संगतों दर्शन दारी बख्शे। आप जी का कोट कोटान शुक्र है। सुरे आप जी की हजूरी च संध्या दवान की समाप्ति तो परंत आप जी के पितृ स्वरूप जी के सुखासन हुए सोहेला बाणी से जा पाए। समुचिया सेवावान निभाद भुलों की माफ़ी बख्शो गावा से समत बख्शनी आप जी के भाणे में चार पहर देन सुखा बतीत है रहना आया आई है आप जी के भाणे में बतीत हो। सतगुरु जी कृपा करो सुखासन तैयार हैं। आप चल के विराजमान संतान खुशियां बख्शो अमृत जागृता बख्श के दर्शन दारे बख्शने से प्यारे मेल जिना मिलया तेरा नाम चेता वै नानक नाम चढ़ दही कला तेरे भाणे सरबदा भला।

प्रभु के श्रवण दृष्ण बुद्ध जय प्रभु के श्रवण सब के सुज जय प्रभु के श्रवण ना हिंदम त्रासा प्रभु के श्रवण पूर्ण आशा प्रभु के श्रवण मन

सुमरसे तनवंते प्रोक सुमरसे पतवंते प्रोक सुमरसे जन परवाना प्रोक सुमरसे प्रोक परदाना प्रोक सुमरसे बमोतजे प्रोक सुमरसे सर्व के राजे प्रोक सुमरसे सुखवासी प्रोक सुमरसे दाबनासी सिमरंते लागे जने आप दयाला नानक जन के मंगेर वाला प्रोको सिमरा से परुपकारी प्रोको सिमरा तन सदबलहारी प्रोको सिमरा से मुख सुहावे प्रोको सिमरा तन सुख बिहावे प्रोको सिमरा तन आत्म देता प्रोको सिमरा तन निर्मल रीता प्रभु को सुमरत ननद कने रे प्रभु को सुमरा बसे हर ने रे सुन कृपा ते अंदन जागो नानक सुमरण पूरा पाग प्रभु का सुमरण

दीन दर दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ अष्टपदी।

ओतपोत जन हर रस रतय सुन समाध नाम रसमते आठ पहर जन हर हर जपाय हर का पग प्रगट नहीं छपाय।

मनयपुण्यते ब्राह्मणा उपेख सकल सृष्टि साधना सुख दुख जन समृष्टिता नानक पाप पुण्य नैलेपा।

तराय संग सहय सुव न चेत जो बैराय तु प्रीत बलुआ के ग्रह पितर बस नंद खेल माया रंग रसाय

मिथ्या चरण पर विकार को ताव मिथ्या मन पर लोभ लुभाव मिथ्या तन पर उपकार मिथ्या बासुलेत बेकारा।

बृहस्पति देह प्रसाद अमृत खाए तिरछाकर को राख मन माहे देह प्रसाद सुगंधन तन लावे तिसको सिमर परम गत पाव है जय प्रसाद बस सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह सांग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना।

जय प्रसाद रिकार्ज पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पावे साचो रे मन मेरे तुता सुराच।

अपने साल बढ़ाई नाने सा प्रभु बने आई साज का संग न कबहुता वै साज का संग सदा सो पावै साध संग बस गोचर लय है साधु कै संग अजर स है साज का संग बस थन ऊंचे साधु कै संग महल पहुँचे साध का संग दृढ़ सब धर्म साध का संग केवल पार ब्रह्म साध का संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साध का

जो इच्छा सोई फल पावै साग संगना बिरथा जावै पार ब्रह्म साध हृद वसै नानक उदरै साधु सुन रसै साध का संग सुनो हर नाओ साध संगर के गुन गाओ साध का संगना मंत्र विसराय साध संग सर पर निस्तराय

ब्रह्मज्ञानी का दत्त बुढ़पा गी पाइये ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइये ब्रह्मज्ञानी को खोज है महेश्वर नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्मज्ञानी का सकल मनमा है ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने पे ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्मज्ञानी का कत्या ना जाय दाखिल ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्मज्ञानी कीमत कौन बखान ब्रह्मज्ञानी की कल ब्रह्मज्ञानी जाने

ब्रह्मज्ञानी मगजगदी का दाता ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष के दाता ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्मज्ञानी का सभी ऊपर हाथ।

मुक्ते कई कोट आत्म ध्यान धर है कई कोट कव का विचार है कई कोट नवतन नाम ते आवे नानक करते का अंत न पावे है।

कोट कर्म कर हो धार स्वरम पावे सगले फिर तार एनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वरूप फिर फिर अवतार अनक जतन कर आत्म ने द्रव हर दरगा को कैसे गवय आपद को जो पला का वह तिज पला निक न आवय

नाम संदक निंदा को सर्वरोग संदक निंदा को सदा विदोग संदक निंदा दुख में दुख नान संद पावेता उसका पी होए मोख संदका दुखे सदा पवे संदका दुखी किसाय का नहीं मेत संदका दुखे को

श्लोक तदहु स्यानम सुरदन हो सिमरहु हर हर राय एक आसर मन रखो नानक दुख परम पव जाय अस्परिंग।

जिन प्रभु जाता सुशोभावंत सकल संसार उदर तन मंत प्रभु के सेव सकल उदाहरण प्रभु के सेव दुख विचारण आपे मेल कृपाल गुरु का सदा पाए निहाल उनकी सेवा सो इलाके जिसनों कृपा करे बड़ पाके।

होगा। हरण पर जाका नेत्र भोर तिसका मंत्र न जाने हो रहा न ध्रुव मंगल सज्जा के सर्वथ उतनी करता के राज में राज योग में जोगिता मत विसृगस्त में भोगित आये त्याय भगत सुख पाया नानक नानक तत्पुर का किन अंत न पाया।

सरवना कर कृपा जिस अपने नाम लाए नान चौथे पद में सोजन गत पाए रूप साजन का सत्य सप पुरख सत केवल प्रदान करतूत सत साजा की बाणी सत पुरुषा माए समाणी सतकर्म जा की रचना सत मूल सत सत्युत पात सत करनी निर्मल निर्मल जिस बताए तिश सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नान गुर ते पाई सात वजन सात

ठाकुर को सेवक जन संग प्रभु का सेव नाम के रंग सेवक को प्रपाल नार सेवक की राखे निरंकार सो सेवक जिस दया प्रभु तारे नार सो सेव सास सास सुमारे अपने जन का प्रदा ठाके अपने सेवक की सर पर राखे अपने दाको देव बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत राखे ताकि गतमित को न लाखे प्रभु के सेवक को न पहुँचे प्रभु के सेवक ऊँचे ऊँचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दया दस प्रगटाया निके गेरे मैकल राखे बसु कर लस्कर कोट राखे जिसका शासन काट तावता को राख देकर आत्मा न जितन कर्तव्य पार जिसके कर्तव्य व्रत आत्मा न राखे वर्ण कोय सर्व जिया का राख सोय काहे सोच कर रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विंडाणी बार बार बार प्रभ जपे पी अमृत एवं मंत्र पिय नाम रतंजन गुरु पाया तिख छव नाय दुष्टाया

आवन जान न होवे तेरा नानक जन कै पूजो हो साध पैरा सलोक सत पुरख जन जाने सतगुरु तिसका नाउ तिसकै संग सिख उद्धरै नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुरु सिख करै प्रतिपाल सेवक गुरु सदा दयाल सिखे गुरु दुरमतमा लहरा गुरु बचने हर नाम उचरै सतगुरु सिखे बंधन काटे गुरु का सिख बिकारते आटे सतगुरु सिखो नाम तंदे गुरु का सिख वड भागी है।

कैसा गुरुड़ पागे पागे सफल दर्शन पे कत पनीत पर सुचन का निर्मल रीत पेट संग राम गुण रव पार ब्रह्म के दरगाह गव सुनकर वचन करण गान मन संतोखात्म पतियान पूरा गुरु आख्य का मंत्र अमृत पेख सन गुण।

संग परेत जिस शोभा को कर पली करने सा शोभा बदर के सर नयन को पावे रोग न जाए रोग मटारे अव खदलाए सर्वण धन मेरे नाम धान तपना दर गय परवान।

समाये सुखमिश्र दे घर न पाने सुखमिश्र दे किया जाने सुखमिश्रा जिन सब कह दिया सुखमिश्र दे जीवन जिया सुखमिश्रा दे अगर मैं राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाख सुखमिश्रा दे व्यक्ति का

काल आर भर कारण करता भगत जना के प्राण दार दो जो जपे सो हो पनीत भगत पाय लाभ है मन ही तम निर्गुण यार नीचे जान नान तुम्हारी शरण पुरख भगवान सरभ वैकुंठ मुख तुम मुख पाए एक निम करके गुण गाय

मनसो सब जगत भरो प्रभु जी आप जाए सतनाम सो जन पाए सो समदर्शी तत्का बेता नान सोल शिष्य का देता दि जंत्र सब तक हाथ दीन दयाल नाथ को नाथ।

अमृत बचन के गुनगाओ प्राण तन का यह सुहाओ आठ पैर पापे खो नेरा मिटिया ज्ञान में से अंधेरा सोनभद सिर दे बसाओ मन छे नानक पर पाव हल पर द्वेले सुवार राम नाम अंतर और तार पूरे गुर के पूरे दिखिया जिसमन बसे ते साज परिखिया मंत्र नाम जब बोल बिलाए दुख दर मंत्र पव जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगाह निभाके तुम्हारी एकाठक रखो मन माए नानक भव न आवह जाए तिस्ते दूर कहाँ को जाए उभरे राख न हारते आए निरपोज पै सगल पो मिटाए प्रभु कृपा ते प्राणी छुटाए

दर्शन पेगत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जा के अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेव परवान त्रदामे प्रभु प्रदान जिस मन बसे सोत निहालो ताके निकट नयावध कालो अमर पय अमरा पद पाया साध संग नान करते आया श्लोक

तम स्नान चार पदार्थ कमल पर गा सब के मैं सकल तेवदा सुंदर चतुर तत्का बेता समदर्शी एक दृष्टेता ये पर ते दिन कह मुख बने गुरु नानक नाम बचन मन सुने यो निदान जपे मन।

मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटाय सन कृपा ते जम तय छुटाय कैमस करम प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जैसे

हथियार पाओ खलाय गण तपताओ पांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़ी है शब्द सची टकसाल।

गणिज्य तिर पहमहि सुर नर असुर नेत नेद बान त्रेन कहत तवै सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत सुमत।

है। केसर बत्र तरान है, केसर बत्र परान है, केसर बत्र देश है, केसर बत्र पेश है, केसर बत्र मान्य सदैव प्रधान्य, केसर बत्र जाप्य, केसर बत्र थाप्य, केसर बत्र

बुझाए। सिमरत साह त्रिपुन पा विचार दे तत्ते सार न जानी, तत्ते सार न जानी। गुरु बाज हो तत्ते सार न जानी, तिही गुणी संसार भ्रम सुता।

तनासरी राग है ते बाणी प्रारंभ हो रही है भगत कबीर जी दी। भगतां दी बाणी दा यह पहला शब्द है तनासरी राग। गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी ने बड़ी सुंदर तरतीब रखी है धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी दी। पहला गुरु साहबाना दी बाणी है, फिर भगत साहबाना दी बाणी है, ते भगत साहबाना विच्चों भी भगत कबीर जी दी बाणी पहला दर्ज कीती है जिस राग विच भी उन्हां दी बाणी है। सो इत्थे भगत बाणी दी आरंभता हुंदी है ते सरलेख है भी राग तनासरी, तनासरी राग अंदर बाणी भगत कबीर जी की, भगत कबीर साहब जी दी ए अमृत बाणी दा ए पहला शब्द है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ये पंचम पातशाह जी ने मंगल आरंभ विच कीता है। जदों भी किसी नवे राग दी नवे शब्द दी भी भगत बाणी दी प्रारंभता हुंदी है तां गुरुदेव पिता महाराज ने पूर्ण मंगल भी कीते ने ते मंगल दा सूक्ष्म रूप भी गुरु साहब जी ने बाणी विच दर्ज कीता है। सो ये दतार पिता जी ने सूक्ष्म मंगल कीता है। एक ओंकार, ओ अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर एक है, सब दा सृजनहारा है, सब दा प्रतिपालक है ते सब नू समेटण वाला। ये तिन्ने शक्तियां उस एक अकाल पुरख वाहिगुरु विच, एक दा अर्थ है वह एक ही है जिहड़ा सानू सिरज रहा है, जिहड़ा सानू पाल रहा है ते जिहड़ा इस ब्रह्मांड नू समेट रहा है। एक ओंकार, कार दा भाव हुंदा निरंतर, उहदी इह कारज उहदी इह कर्म जिहड़ा है पालण दा मारण दा प्रतिपालण दा लगातार चल रहा, निरंतर चल रहा। हर मनुख निरंतर ही इन्हां तिन्नां शक्तियां दे विच ही रहिंदा है। परमात्मा निरंतर सानू जीवन देंदा है, निरंतर साडी प्रतिपालना करदा है। जो असी पंचम पातशाह जी दे बचन तनासरी राग विच ही पढ़दे हां कि उहदी प्रतिपालना कैसी है, तुम दाते आकुर प्रतिपालक नायक खसम हमार, निमक निमक हर पल हर घड़ी ओ सानू पालदा, निमक निमक तुम ही प्रतिपालो हम बारिक तुमरे तारे। किवें पालना करदा पंचम पातशाह, कहिंदे जिवें इक छोटे बालक दी प्रतिपालना संभाल एक माता करदी है, निक्के बालक गोदी वाला बालक जिहड़ा जिहड़ा निर्भर है अपनी माता ते, उस बालक दी प्रतिपालना जिहड़ी है वह मां अठे पैर ध्यान विच रखदी। इसे तरह अकाल पुरख वाहिगुरु दे असी बारिक हाँ, बच्चे हाँ, अबोध बालक हाँ, ते उह पल पल साडी प्रतिपालना करदा। हम बारिक तुमरे तारे, सत गुर प्रसाद, सत दा अर्थ है वह परमात्मा सदीवी है जिन्हें साडी प्रतिपालना करनी है। दुनिया के अंदर मां बाप प्रतिपालना करते ने, भैन भरा रखिया करते ने, जां होर सज्जन मित्र साडी मददगार हो सकते ने, पर सत कोई भी नहीं, सदीवी कोई भी नहीं। यह संसा बनिया रहिंदा भी कदी भी किसी का साथ छुट सकता है, जां असी उन्हां तों दूर हो सकते हैं, जां साडे तों दूर हो सकते हैं, पर अकाल पुरख वाहिगुरु को समा विच जां सीमा विच नहीं आउंदा भी असी जिवें किते दूर चले जाइए ते मां बाप दियां दूरियां पै जांदियां, भैणां भरावां दियां दूरियां पै जांदियां, मददगार नहीं बन सकते। पर कहिंदे अकाल पुरख वाहिगुरु सत है, सत दा अर्थ है हर थां ते सदीवी है। असी जिथे भी चले जावांगे वह वाहिगुरु साडी उत्थे ही रखिया करेगा, क्योंकि वह सत है ते सत हर थां ते हुंदा, सदीवी हुंदा। तां ही दाता जी ने वचन कीते ने, सदा अंग संगे अभंगंग बेपूते, तू सदा साडे संग है, गुर मेरा संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा संभाले। उहनू सदा सिमरांगे ते सदा ही साडे नाल। सत है गुर प्रसाद ते गुरु की कृपा नाल, गुरु की बख्शिश नाल, गुरु के त्रुट जाण दे नाल, गुरु की खुशी दे नाल वाहिगुरु मिलता है, वाहिगुरु की कृपा होंगी। सो इउं कह लईए भी रब का दरवाजा गुरु के दरवाजे को आके खुलदा, जिहड़ा गुरु के घर आ गया उहदे लई परमात्मा का घर खुल जाता, ते जिहदे लई गुरु का दरवाजा बंद है उहदे लई परमेश्वर का दरवाजा नहीं खुल सकता,
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਮਹੇਸ਼ ਸਮਾਨਾ। ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਸਨਕ ਅਤੇ ਸਨੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਛੋਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਪੰਡਿਤ ਨੇ, ਗੁਣਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਨਕ ਸਨੰਦ, ਸਨਤ ਕੁਮਾਰ, ਇਹ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸਨਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਸਮਾਨਾ, ਮਹੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਹੇਸ਼, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,

मिल प्रेम रहना ना घना अपने बचन मीठे पाने परिवर्तन का मरेज भाई हर मिले पर चिराने चेता ग्रह सोलड़े पढ़न दा मातन रवरिया अपरा परमन दा हर कांता नाता ज्यासी धरा गोबंद पद धारनो प्राव के बाद तारी हर मरारी पैसे सागर सारनो जो सरनावे तिस कंट लावे ए वैदा स्वामी संदा बिनवर्तन कर हर कंत मिलिया सदा के लकरंदा

सच्चे शब्द विचार नानक सुख दाता सेविया आपे परखण हार बौड़ी जी जंत सब तेरिया तो सब नाराज़

गुरु अमरदास परसी सिद्ध साधक असाध से, गुरु अमरदास परसी सिद्ध साधक असाध से, गुरु अमरदास परसी ध्यान लइए पौ मुके, गुरु अमरदास परसी ध्यान लइए पौ मुके, गुरु अमरदास परसी अबो लवे गौ चुके, गुरु अमरदास परसी अबो लवे गौ चुके, एक बैन दुगण जो तो रहे सास मित्र मान वाले, एक बैन दुगण जो तो कह रहे जास मित्र मान वाले, जाल पाप दार्थित रहे गुरु अमरदास डिठे मित्र, जाल पाप दार्थित रहे गुरु अमरदास डिठे मित्र, जाल पाप दार्थित रहे गुरु अमरदास डिठे मित्र, थिर कर बहसो हर जन प्यार सतगुर तुम।

नदन है परम दा परम पुलाया अमृत तज विच संग्रह करता है आप खवाया गुरमुख विर

हरि आप वरते आप, हरि आप बुलाइंदा, हरि आपे सिष्ट सवार सिर तंदे लाइंदा।

तान संपह माया संचय अंत दुखदाई कर मंदिर मैल सवारियां कित साथ ना जाई हर रंगे तुरै नित पालिया कित काम न आई।

जाते। जिनके कर्म अंदर में अर्थ राय सब पवित्र है, जिन गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए बरसाते। तिन के तुरे दीन खुर गी सब पवित्र है, जिन गुरमुख सिख साध संत चढ़ जाते। जिनके कर्म धर्म का सब पवित्र है, जो बोले हर हर राम नाम हर साते। जिनके पुत पुनः से गुरु में सिख गुरु पै जाता है, श्लोक महला तीजा।

सदावसाय। बिन सतगुरु नाव न पाइए बुझो कर विचार, नानक पूरे पाक सतगुरु मिले सुख पाए दुचार। महला तीजा।

नरपत एक सिंहासन सोया सुपने पे आपेखारी अछतराज विश्रद उपाय सोगत पई हमारी राज पुयंग प्रसंग जैसे है।

प्रभु जी को नाम जत मन चैन भो प्रकार खो जय सब ताको विकम न जाई लैन राव जाप ताप पर मन बसुदा कर उर्द

सगले अदार नानक जाचा संतरे नाथना से महल्ला पंचमका एक्यों अर्थ गुरु प्रसाद कारबार तेरा प्रवासा तू कहां जनके हैं संग कर कृपा प्रेतम प्रवे अपने

कमल दुख देख्यो कर सतगुरु प्रसाद। सिमर सिमर सिमरत पाव सात सात संभाले लोक पर लोक संग साई जात का तुम रखवाले।

पचिन्हें मिटाए ना ब्रह्म के का इतना सिमहल्ला नाम साधो ए जग ब्रह्म पुलाना राम राम का सुन छोटे माया हाथ बिखाना रहो मात पिता पाए सतवंता का कहे रास लपटाना जो बचन प्रभुता के मन में अनंत रह दीवाना दीन दयाल सदा दुख पंजनता से मन न लगाना जन नानक कोटन में जन्म गुरु कोई पहचानना इतना सिमहल्ला नाम ते जोगी को जो तन जानन दो मोह माया ममता फल दे काट माहे बचन रहो

श्री महल पंचम कर श्री महत्पदी क्यों कर सगुरु प्रसाद जो जो जूनी आयो तिवृदायो माण जन्म सजो पाया ता कि आयो उठो साध रखो देकर हाथ कर।

ईश्वर पेटा संत मेरे लाए सगल चिंता ठाकर मेरा रंग लाव पढ़े सग पढ़े रे सगल भेद न चुके मन भेद कहन न तेरे मेरे घर के पंचा कोई ऐसा

गोत्रम किने मनवान पति ने बबेक हीन दही तोय कोई पाये रे पुरख विदाता पार ब्रह्म के रंग राता मेरे मन के दुर्मत माल खोए करम धर्म जुगता नमित ना हित करता गर्भ गर्भ पड़े कहीं ना लिखे जिद पेट ये सब मूर्ख कर रहे सदा कीर्तन सदा कीरत गुर प्रसाद को नेत्र फेंके मन हट जो कमावे तिल न लिखे पाए बगल ज्यों ध्यान लावे मारे तारी कोई असुर सुखदाय प्रभु की कथा सुनाई तिल पेटे गत हो हमारी सुप्रसन्न गोपाल राय का तेरे बंदन माए गुर के सद मेरा मन रहता सदा सदा नान पेट निरुपय को बंद सुख नानक ला दे चरण पर रहता सफल सफल पै सफल यात्रा आवण जा रहे मिले सदा रहा दूजा चना सु महला पहला शांति क्यों कर सद प्रसाद तीर्थ नावण जाओ तीर्थ नाव है तेरे शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुरु ज्ञान साचा थान तीर दास प्रभु सदा दस राम नाम हरका सदा जाचन देव हो प्राभु तरणी तरा संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना गुरुवाक निर्मल सदा चरण चाहे तीर्थ मंजना साथ न लागे मैल क्या मत तो ये गुण हार प्रो किसको रोई है विचार मारा तरे तारे उठ गो न आवे आपार परम ज्ञानी चाहे सच पावे आनंद आनंद आनंद आनंद हर के साथ दुख रोग पर आ रहे सच नाम पाया गुरु दिखाया मैल ना ही सच मन संगत मित मिला पूरा ना अपनो गावे गावन हर सब सो अपनो सलाह सच मन सदगुरु पुण दान दे अमृत फिर संग ना वे सहज ना वे प्रणित संगम सत फिर संग पावे सहज ना वे प्रणित संगम सत सत अराधे कंकर सचा नित दय चण सवाय सा गत संग मिता संत संग करण धर मेल मिलाया कहन कह सब को केवड़िया किए मूर्ख ने जय जान समझा था कि सच गुर के साके मूल पगे तित मन मानिया मेरा कोस करा वह बिखला दे सब दस्तु जय गुरु मेरे आखन तोड़ना भगत भंडारे पर रहा सोई नानक साच कह बनाते मन मान जैसा सोए तना सुमहला

संसार ना बिना नाही को बेले बिकला दे चर पारा हुक्म आया हुक्म ना बुझे हुक्म सुवर्ण हारा नानक साहेब सब पै सत सजन हर पर स्वयं दरबार शब्द सुहाय दियो बोले अमृत बाण रचन सुहाय दियो रचन सहाय नाम सुताय गुरु के सर्व कहने पार सब पर से पार सोय जाम तेरे अमर पाने अमरा पद पाया गवाया बड़ला ज्ञान विचारे नानक भगत स्वयं दर सच सत्य के व्यापारे भुख प्यास वात क्यों दर दाय सा दियो

साध संगत बिना भाव नहीं उपजे पा बिन भगत न होई है तेरी होए है तेरी कह रविदास इक बेनती हर सों पैज राखो राजा राम मोरी नाम तेरो आरती भजन मुरारे हर के ना बिन झूठे सगल पा सारे रहाव नाम तेरो आसनो नाम तेरो रसा नाम तेरा केसरो ले छटकारे नाम तेरा अंबला नाम तेरो चंदनो खस जपे नाम ले तुझे को चारे नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले माहे पसारे नाम तेरे की जोत लगाई पहु जे आरो पवन सगलारे नाम तेरो धागा नाम फूल माला पारे उठारे सगल जुठारे तेरो किया तुझे किया अरपो नाम तेरा तुही चवर टुलारे दस अठाई अठ सठे चार खाणीए वर्तन सगल संसार कर दस नाम तेरो आरती सत नाम अर भोग तुहार तनासरी बाणी भगतां की त्रिलोचने को ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण निंद सकाए भूली गोवारी दो किरत सो किरत थारो करम रीरा संकरा मस्तक बस्ता सुर सरी स्नान रे कुल मदे कुल जन मदे सिद मिलो सारंग पाण रे कर्म करो कुलंक मगठी श्री विश्व विश्वकाश दास दीपक संवामी तांचे रे स्वार्थी पंखी राय गरड़ तांचे बाद भाव कर्म कर अरण पिंगुलारी अनक भांत हरता त्रै पवन नाथ री तीर्थ तीर्थ परमता लहे ना पारी कर्म कर बालमुखी सरी अमृत शशी तेन लक्ष्मी कुलक्तर शिखर सुनागर नदी चे नाथ कर्म कर खार मुखी सरी दादी ले लंग साल मिसल आन तो किए ले हरी कर्म कर कसौटी मुखी सरी पूर्व लो कृत कर्म नाम तेरे घर गहन तांचे मोहे जापी ले राम चे नाम बत्र लोचन राम जी श्री सैन धूप दीति धूप दीप कृत साज आरती वारण जाओ कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को रहाओ उत्तम दी अरा निर्मल बाती तु निरंजन कमला पाती रामा भगत रामानंद जाने पूर्ण परमानंद बकाने बदन मूर्त पै तार गोबिंदे सैन पणे पज परमानंदे पीपा कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाति कायो धूप दीप निवेदा कायो पूजो पाती काया बहुखंड खोजते नव निध पाई ना किछ आयबो ना किछ जायबो राम की दोहाई रहाओ जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे पीपा परमय परम तत् है रायारता जो जन तुमरी भगत करन ते दिन के काज सवारता रहा दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो अपनी आशा दनिया निका अनाज मंगो सत सीका गौ भैंस मंगो लवे री एक ताजन तुरी चंगेरी कर की हन

चौथा कर पहला चौप देखो ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे हीर रतन नाम हर बसिया गुर हाथ तरियो मेरे माथा जन्म जन्म के केल विख दुखी उतरे गुरु नाम दियो रिन लाथा मेरे मन भज राम नाम हर अर्था गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया बिन नामे जीवन बिरथा रहाओ बिन गुरु मूढ़ पय है मन मुख ते मोह माया नित फाथा तिन साधु चरण न सेवे कबू तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सबल्यो जन्म सनाथा मुख कीजे दास दासन कोर दया धार जगन्नाथा।

प्रभु को जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जप प्रभु को गुर प्रसाद नानक मन वसिया दुख न कबू चूरो बुज प्रभु को जय श्री महला पंजवा लोड़ींदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके गड़गड़ तसे बसेरा राव सूखे राधन दुखे राधन बिसरे ना काहू बेरा

छुटके जमे डरा। अयो दुख हरण सरण करुणा पात गयो चरण आसुरा नाव रूप भयो साध संग भवनिध पार परा अभ्यो पियो गुत थियो परमा कौ नानक अजर जरा ज श्री महला चपंजवा जाको पै गोविंद सुहाई सु सह।

छोड़ियो जन नानक गुरुगा सुना पढ़ियो रे टोडी महला पंजवां घर पहला दो पद एको अंकार सतगुर प्रसाद ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन पंच दो खरंग रोग तन ते सगल दूर कीन राग बंधन तोर चोर बिख्या ते गुर को शब्द मेरे ही दीन रूपन रू मोरो कछ ना बिचार प्रेम गयो मोय रंग भीन पेखो लालन पाठ बीच खोय अंत जिता हर के पतीन तिसही को ग्रह सोई प्रभ नानक सो ठाकर तिसही को तीन ठोडी माला पंजवा माई मेरे मन की प्रीत ई करम धर्म जापे ही राम नाम निर्मल रीत राव प्राण आधार जीवन धन मोरे देखन को दर्शन प्रभ नीत बाट घाट तो सत्संग मोरे मन अपने को मैं हर सखा कीत संत प्रसाद भय मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत सिमर सिमर नानक सुख पाया जुगाद भगतन के मीत ठोडी माला पंजवा प्रभ जी मिल मेरे प्राण बिसनाई नमक ही पी ही रहते अपने भगत को पूर्ण दादा को परम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सूर सुजान कोट राज नाम तन मेरे अमृत दृष्ट धारो ब्रह्मान

तुमरा जस गावे करते से जन कबु न मरते चूर धंध बंद बन से माया के सा के साधु संगत मिटे बसूर सुख संपत भोग सजी के बिना नानक जाने कूर टोडी माला पंजवा माई मेरे मन की प्यास एक खिण रह न सकू बिन प्रीतम दर्शन देखन को धारी मन आस रहा सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विख नास पूर्ण पार ब्रह्म सुखदाते अविनाशी विमल जंको जास संत प्रसाद मेरे पूर्ण मनोरथ कर कृपा भेटे गुण दास सांसै सुख मानवी उपजो कोट सूर नानक बरगास टोडी महला पंजवा हर हर पतत पावन जी प्राण मान सुखदाता अंतर जामी मन को पावन राज सुंदर सुगड़ चतुर सब बेता रिद ना दास सुनवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी करम पूम बीजन सो खावन बिस्मन बिस्म पै बिस्मादा नथियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन टोडी महला पंजवा माई माया छल तृण की अगन मे की छाया गोविंद भजन में नारका जल राग छोड़ सियाण बौचित राई दुए कर सा जोड़ साध पग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मानुख देह का उत्तम फल वेद बुख्यान करत साधु जन भाग

गावते जोते बनासी काम क्रोध बनसे मद ढीठे अस्त्र पै साच रंग राते जन बरन बौरने पीठे बिनर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब झूठे राम नाम रतन पायो जन नानक ना ब्यून चले सब मूठे टोडी माला पंजवा सा संगरा रतनाम चितारा सहजना तो वे तुराति अंकुर भलो हमारा राव गुरपुरा पेठी अवट पागी तांको अंत न पारा बार कर गै काट लियो जन अपना बिक सागर संसार जन्म मरण काटे गुर वचनी बोड़ ना संकट द्वारा नानक शरण गई स्वामी की पुने पुने नमस्कार टोडी माला पंजवा माई मेरे मन को सुख कोट आनंद राज सुख भुगवै अर सिमरत बिनसे सब दुख राव कोट जन्म के किल विख नासे सिमरत पावन मन तन सुख देस देख सुरूप पूर्ण पैया सा दर्शन भेड़ती उतरी भोखा चार पदार्थ अठ महासिद काम तीन पार जातर रुख नानक शरण गई सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना धोख ठोडी माला पंजवा हर हर चरण हर देर धारे सिमर स्वामी सतगुरु अपना कारज सफल मारे रा पुन दान पूजा परमेश्वर कर हर कीर तत् विचारे गुण गावत्या तुल सुख पाया ठाकुर गम्य पारे जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बौर कछ ना बिचारे नाम रतन सुन जप जप जी मार नानकंठ मझारे टोडी माला नामा एको ओंकार सतगुर प्रसाद कहो कहा अपनी उदमाई उर्ज हो कनक कामनी के रस न कीर्त प्रभ गाई रा जग झूठे को सा जान कह ता सिंह रोचे उपजाई दीन बंध सिमरों ने कबू हो तो जो संग सुहाई मगर ने माया मैं निस देना छुट्टी न मन की काई कहु नानक अब नाहे अंत गात बिन हर की सरनाई टोडी बाणी भगतां की एको ओंकार सतगुर प्रसाद कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर जल की माछली चरे खजूर कायरे बख बादल आयो जे नार पायो तने छपायो रा पंडित होय के बैद खाने मूर्ख नाम दियो रामे जाने

श्याम को नमे मदे रामे आचे राम श्याम को बिंद गो राग बेराड़ी माला चौथा कर पहला धुप दे को ओंकार सतगुर प्रसाद सोन मान्या कात कतार नाम रिद बुद्ध सेत सुख पावे भज गुरमत हर राम राम राव नाना ख्यान पुराण जासी उत्तम कर दर्शन गावे राव शंकर करोड़।

तेरी भगत वडियाई पाई नानक प्रभ सरनाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त आजुनी सह भंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानको सी भी सच सोचै सोच न हो वही जे सोची लखवार चुपै चुप न हो वही जे लाए रहा लवतार भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सह सियाणपा लख हो है तां इक न चलै नाल किव सचियारा होई है किव कूड़े टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी ओवन अकार हुक्म न कहा जाई हुक्मी ओवन जी आ हुक्म लै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है कना हुक्मी बगसी से हुक्मी सदा पवाई है हुक्मे अंदर सब को बार हुक्म न कोय नानक हुक्मे जे बुझै ता हमें कहे ना कोय गावे को तान होवे किसे तान गावे को दात जाने निशान गावे को गुण वडियाइयां चार गावे को विद्या विखम विचार गावे को साज करे तन खेह गावे को जी लै फिर देह गावे को जापे जिसे दूर गावे को वेखे आदरा हदूर कथना कथी न आवे तोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहु नानक विकसे वे प्रवाह साचा साहब साच नाए पाख्या पहु अपार आख है मंग है देहे देहे दात करे दातार फिर के अगे रखी आए जित दिसे दरबार मोह के बोलन बोली आए जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाव वडे आई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार नानकी वह जानिए सब आपे सचियार तापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गावीए गुणी निधान गावीए सुनिए मन रखिए भाओ दुख पर हर सुख घर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिहा समाई गुर ईसर